0: हेलो हेलो सारी क्या सातनी सारी
1: हेलो आं यांग कंप्यूटरन बिसरे खारि दं दो
0: सारी
1: लादरा
0: क्या सातनी सारी
1: कंप्यूटरन नि
0: खनागा खनागा सारी
1: आं रेतामुं खनानाय अबो ओ पीसी सानाय कपसांग बसानाय मने ओ रेतामुं न खनार
0: साबरसाब

0: ஹலோ
1: ஹலோ
0: ஹலோ
1: ம் சரி
0: இந்தா பிரசாந்த் பொங்க
1: நான் பொங்க ம் ஆ சரி தோ
0: மணிக் பாய் பிபசானி நீனி பாய் அனி மனக்கு நாரி ஸ்ரீதரா
1: மணிக் பாய் பிபசானி
0: மணிக் தை பிபசா பாய் ரசா தங்கி பாய் அனி ஹிமலந்தா
1: தோ
0: பலே பொங்க அம்தரா
1: ஆ பொங்க
0: काम तो नो बदर ना
1: है काम नो काम आओ हां नोनी बगिन आंग रा सुख तंगो जेमन छक आंग कसारो कायनी कोक छनाय दो है के जतनु सामुक ताम मंगला टेक छ कोक दुनाय केना हेलो
0: हेलो
1: हां शादी
0: काम दर ना आंग शेयर ताम करनाय छिन जे बाय खबर खनाय ई तो हि माने খাবো মি কি কি বা হিনি মানে অ কোন দা বিমল দে
1: দা
0: তো মনে খাই তারা
1: এ
0: নিওর তো মনে খনা দিকে তো তান বাইন তোমার তান তারা নন বড়ে দিকে হুম
1: হুম
0: হাম বাই জানা
1: হাম বাই মেলে কেন হাম বাই যত নন নক নিরে সামং টাম টং গঙ্গা থাইচং খরো সার মান কক বিটি শাড়ি হিনি যাই নিন বাকি অর সাপ মু

अनि खबर नेता अक्टी बुक्सङ आशुक जरा सङ्ग्र चापमुङ खा लाइका नर्मी कै हरमाने रे चापमुङ ताउ चङ किसा हा रेडियो को जहाब लाइन नर गहन छ हरदि आबनो लहा नेरे सङ्ग्र चापमुङ खा लाइफिनाय हंके पुलानो रेडियो क्विज ने आं क्वेश्चन तीन टू स्पोर्ट्स नो टी कॉक जंग जतनो सायमानो जंग संसार सा काम गंगे तंगना बगे हंके थंगना बुनांगो ते नने माइंड ऑफ फ्रेश का तंगना हंगे थंगना नांगो ते किसान मॉर्निंग अग्रो खलाइने नि छाग्रनो काम का तंगना नांगो टाबुनि ओ स्ट्रेस जराव नने बखानो काम के तन्ना बगे हंके जंग गेम्स एस स्पोर्ट्स टम फुटबॉल टम क्रिकेट तम खाचिक माने मर्निंग वाक बे जों बेग्न खलायनांगौ अ संसारो जों सायमोन हेल्थ इज वेल्थ नों तुमुं साक कामके बिबां काम नै थानाय नों जेसे पना रां बुसा तंग नै साक हामिया हंगांके नों काम के तंगिमिया हे दिबा अन बगै जों जेने साक नो काम खलायना हंगांके जों जेसके पनो जेने थंगमुं नि बिसिंते परिश्रम खलायमान बिसिंते जेने साक नो जों काम कनगे तंगनान बगै नरक जतन वान सुखलाजि अन बै नों नाय नै दिबा ताउनि सारा रोगनि जों गोबांमान नुगौ बरक अमहाय गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स अगो गोरोंनि टंगियानि बागै गोबां हामिया लामायाव थांमानि जों नुगौ बरक ड्राग्स कुबुलो हामिया सामुगौ कुबुलो आबहाय इंमा नुगौ आउन बागैन गभमेन्टनि बखाखनि बानांथों बेबाक हाफांनि बखाखनि बानांथों एडिसि हाफांनि बखाखनि बानांथों जेने स्टेट हाफांनि बखाखनि मरता वान सुखैनायदि गोबांमा गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स अग खायरिय' थंमुं रग खायरिय' दामबै हांगे अमहाय थंमुंगो इनवल्भमेन्ट ओंगि दाहांगिनि माइन्ड फ्रेस दङ हामिया सामुंगो इनवल्भमेन्ट ओंगिया ओंनानि बागै वान सुखलायो गावन बागै आनि खाबांनि दाउदि बुकसं नरक बाहायन गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स दङ गोबां परिमान बिसिंथि बाहायन जों थोङै मानुहाजे ओंखा आं दा कासे कुसेन दं बागै आं खालायग्रांनि हुइस अट'मबाइल कम्पानि बिकाम दि फार्स्ट the exclusive sponsor of the tennis premier league through a 3 years membership partnership in 2026 recently tabuk tennis ne kase premier league khanaro jotono saimano ajago ang recently

कारण कौन सोने अजाग कैसा गारी फालने अटोमोबाइल कम्पानी जे टेनिस प्रीमियर लीग 2026 निसिमी अब थ्री इयार्स नि बागे बर पार्टनरशिप खाइका आ कम्पानी मूंगाम सैजामान और तंग हुंडई टाटा मोटर्स महेंद्र एंड किया और कईब्री नरकनी नरक सहरदी बुबो अब कम्पानी खाई कहने अमका टेनिस तबुन अजर अचिनी सर जत्न क्रिकेट न हम जकू टाक आई पी एल अंगी टू जत्न क्रिकेट न हम जकू आहन बगे क्रिकेट ने संगा तेब अलगा सोनाई नर केव सैजामान टेनिस प्रीमियर लीग नियमो कैसे कौडू पैन लेकिन दीपर कहम दीपर कहम हम भाई दो हुंडई या नक्टे विषापन नाई नहीं फिरी टैक्सी कौतु नाई नहीं क्या रिसेंटली नव प्रीमियर लीग पाई टेनिस प्रीमियर लीग नर नुकना थ्री इयार्स निभागे पार्टनरशिप खाई जा 2026 बीस निशिमी टेनिस प्रीमियर लीग क्रिकेट निभागे अजागे हुंडई टाटा मोटर्स महेंद्रा टेकी आतंगो कईब्रई अटोमोबाइल कम्पानी बर कबन सैन खाई क्या नाबन सैजामान गया सैखना दी टेक से कौतु नाई नगेना दीपर कहम हाँ भाई चाली टेनिस प्रीमियर लीग जे मानी तबने रिसेंटली आ जगह कैसा कम्पानी बै टाइप घाटा मोटर कम्पानी अब उनका हुंडई टाटा मोटर्स महिंद्रा टेकिया बरक बै के हम बै चाखा मेले हम बै किया मोटर्स बै टाइसा टाबुना जी जो जत्न चीनी हास्टे त्रिपुरा तो जो लंटन हिसाब थे ना बेलेगे थे आन बगे टेक आंगनाई हुई प्लेटफॉर्म पैटर्न उथ स्कूल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च खेल गया सी डब्ल्यू सी 2023 एंगेजमेंट इनिबिटिव इन 2026 जो बो प्लेटफॉर्म बखाते सैंकट स्कूल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बखाते कैसा जन सक कहम के तौना बगिनाई जे वन सूल मानी अब टाम अब का फिट इंडिया माई भारत खेलो इंडिया नेहरू युवा केन्द्र अब हुई प्लेटफॉर्म पैटर्न उथ एस ए आई टू लॉन्च सी डब्ल्यू जी 2030 एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स इन 2026 माने 2026 न इनिशिएटिव खाइजाखा किंतु 2030 जरा अब कहम के खाइजान बगे जे स्कूल अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैनि बखाते अजगह 2030 जरा एंगेजमेंट खाइजानी वन सुखा आउ बुबो आउ फिट इंडिया माई भारत खेलो इंडिया ना नेहरू युवा केन्द्र कॉग्रुप नाइन ना हेलो हुई प्लेटफॉर्म पैटर्न उथ एस ए आई माने स्कूल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू लॉन्च सी डब्ल्यू जी 2030 एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स इन 2026 फिट इंडिया माई भारत खेलो इंडिया ना नेहरू युवा केन्द्र आब क्रंजा फिट इंडिया किसी सानी बागे भाई फिट इंडिया तो अलका क्या ओके माई भारत दो माई भारत कक्री जा कक्री एक्चुअली जो तबुंग अजर जो रेसा मूंग खाला हाई हाई रेसा मूंग हाफान जो गुबुल लाइफिने कचारे किसान नरक ककमा सका तेई किसा मिसा जिन्हें उर्स पुर्स नी कक सका जिन सक कहम के टना बगे हाँ जो ना तबुंग अजर आं कुछ ने कचार कचार नो जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स ने जिन्हें बस कहम जो वन सुख मैं ना तब कम बड़क किसान केनो सूगार मानजा फो किसान केनो हाई प्रेसार फो के

0: हाइनो गलि गलि बासायने आदारालायो आबा हाइरक खालायोनै माथो थांखि माइन्ड फ्रेस खायदि नि माइन्ड फ्रेस सङानो प्लास माइन्ड फ्रेस सङाके बियांनो फ्रेस हायसि नेने सावंगो जानाय प्लास सामुं सामान बिसिंतै नेने बखाबो बासाय जोंनै आराम नांगै जोंनै हायसि आउन बागै हाइनो टंगियाउनै फुङाइसिरो खिसा फ्रेस के बेरायलायदि टंगलायदि तै माइन्ड फ्रेस के टंगि हायसि टेक्स्ट कौतु नाइन गेना तिबर कहम
1: हेलो
0: हाँ हेलो सादी
1: दानिश सिंगर
0: हम भाई बेलेखन फेमस से बकताल फाइनै हाइपन बेलेखन कहम थंगा अन बगे आगिनि कसाम रंनो बियाम न हारिनि गो फायो बेलेखन को जनेक से सिनार कार्लोस अल्कारास अलेक्जेंडर जेब्री डानिल मेडवेव अब बड़ खरग बुरी अजगत मैंने सेलार रंग विशिंग यू एस सेवन 2025 लन टेनी जीटी नाइन विशिंग रगान सहर दी हमका आंग सहर चुआन अरंका कार्लोस अलकारास बो बेलेखनों का हम ठंका बटाबुक रैंकिंग वानो तंगो ब टाइटल जिटी मानी जेनिक सिनानो बहारो बंका अलकारास टाबुक हंका वाल नंबर वानो तंगो फाइनलो बमो जिटी मानी उलो टेकेसा आं नों सोंनाय

0: लामसुगु हन नक्ति हमजमा चिनि खटमा पांदो ताबुक जं रसाबुं खनालाय सावताम रसाबुं खनामुसुं अनु साहरदि जे मानसक कांगनाय नै नंबाय रसाबुं तामना बागै से कोक दुख नाय नै गना दिपर कहम
1: हेलो करो
0: हाय छदे
1: रसाबुं
0: खनामुसुं रसाबुं সাহদি দেব আংকাইনি নং কগ্রুতি সানাইহীন দো তাকে সে কক ডুক নাই কেনা হ্যালো

0: हेलो आने खामानी दाक टेबुक संग नंखना चंगु जेंट अपने कॉक पुरक पांडा सारा पॉइंट मेगा हर्ट्स तो ताऊ चंग खाले चंगु नॉर्थ के हम चंगु चिनी खाटुंग वा पांडा हेलो हाँ सादी
1: इंडी तो कने गाम कैसा ना ना
0: सादी
1: बो हाँ मैंने भी प्यार किया है रिश्ता मेरे को

दाजागानाय आंखा खालायो आव फाइदिजों दिनै कक सालायनाय सिख्ला सिख्लि लामा कर दंमानदै सिनि मकल ताबुनुक जागो सिख्ला सिख्लि र गोबांमा लामा करय दङ हास्थेव आम कायसा सिनि बांगै वाना जांनाय सानानि थांखे चिनि थिनांके चिनि सिख्ला रक्से दमुचुं बरग्न ओ लामा करमानि कासुया हांके चिनि थिनां एबा चिनि दफारक बेलायनो मोनाजा खेने मानो तामने हांके दिरुक दिरुक काबि आमचाय लगब ते आगुलि लगब लामा करय तमनि नंगु बाहायके हांके जों सामसिद्रा खलायै ते अमाहाइफ केफेक मानिबाय खलायै तंगै चिनि लांमानो एबा बरनि लांमाव अमाहाइके न कररि उइ एबा देरारि उइ तंगो सानानि थांखि अम बेलाय वान आम सिंसा अब बाहायके ओंगांके जों चिनि सिख्ला रक बाक्सा बाक्सा आगुलिव परिना हिनै फायो आमनि बिसिं बिसिंग जों बरक हामि रक बाय खोथावो दे सामु हामिया दिनै किसा खोना किसा खलायते खलायते आम हाइन लम्बै देव मोनागो थांगो बरंनि लामाव दे गामियावबो हानियाव नुजागो जों बाक्सा बाक्सा अखरा जाग्रा रंनि थाजों फाजों दैब जों मा सोरोंबाय दामनि हिंगांके गोबां मा गामि आमसयो न अखरा जाग्रा रग जिरायनो जिरायनि सिमि जुवाक रग एबा वालाय बुलाय दलाय रग फोरोंगै फायो फियाबा अ फोरोंमानि बिसिंदै जिराय रग नुगै दङ दे दिरुग दिरुग नुक्ते नुक्ते बरग आम हाइन सोरोंगो जों बर' रग जे जागाव दङ एबा जे थायो दङ आ थायनि इनभाइरमेन्ट आमनो आम हाइन सोरोंलायो जों आमनो पुइला आं बुमा बुफारनब कयना मुसुङो जों स्राय रंन बा सिख्ला ओंना सिख्ला जरातै जों दिरुग दिरुगे जिनि बोसाबोतै रंन गाहामनि लामा फुनंनानै एबा गाहाम फोरोंनानै आबो चिनि थानायव बेलाय रेसपन्सिबिलिटि कर्द तामनि हिनके जों चिनि बोसानो गाहाम फोरोंखे जे गाहाम रोंनानै गाहाम सारखे जे गाहाम सायमानानै दे जों जिनि ससाइटियाव बाहायखे बरक बायदंनानि नां दे बाहायखे कक सानानि नां आबो जों बुमा बुफारक बेलायनो चिनि थानि रेसपन्सिबिलिटि बोसारंनो फोरोंनानै दे आमा हानियाव नुजागो सिख्ला रक ओंते ओंमानि यागल जों बर' रग गोबांमा हामे बाय गबुलै देरावै फेंमुंमानै एबा ड्राग्स रग बाय गबुलै दङ गामि आमजायो दल दल दंलायो दे लेखा फरानो दिरुग दिरुग हाकजालै हव आम सानानि थांखे बेलायनो वाना मासिंजा जों अबनतैनो जों जत लुकुरग मा वानसुक्ताय जों बाहायखे जिनि सिख्ला सिख्लि रंनो जों बाहायखे लामा करय दंमा दुबुनानि आबो जों बाहायखे गाहाम फाजिंग बंन एट्राक्सन खालायमानानि आबो जों चिनि सिलाय कुसुरंन एबा चिनि सिख्ला रंनो जों फोरोंनानि नांगौ दामहांगांके बर'नो सामु हेमे खालाय दंगांके बाक्सा बाक्सा जों चिनि बर' रग नुगजागो फोरोंगिया जानजानि लाइफ जानजानि इच्छा जेसाबान दंथों आबो रग हिमानि नंगौ फियाबा अमा कायसा बेलायनो हामे लामा हिनै नों निजि निजि बरक हामे लामा गोलोग दमनि बिसिंग फानजि नों नुगै दं फानजि बरंनो माना खालाय एबा कासुया हांखे अब नों साक सासुनो बरंनो रिउै दंमानि हिनै खालायो दे अब हाय रंनो जों मा कासु लायनाय आं जतन न कयना मुसुंग दे जों गोबां मा फाथ्र हास्ते रखे नुगु गोबां मा सिख्ला सिख्ला रग गाहाम सोरोंगो दे गाहाम परिव ते एलेम गोनांगो ते बरंनि थिनां रग गोबां मानो जोंजाल गोरै ते सिमु रंनि बिसिंदै जों नुजागौ फियाबा जों नाहार नाके जिनि दिरफ्रा हास्थेव अंगाय दिरुग दिरुग कमल लामा थाङै दङ अमनन जों जिनि सिख्ला रग एबा जों जिनि सिख्ला रंनो जों मा साथाय ते मा फोरोंथाय आर वायर अफ मार्केटिं जों टेबो कक सालायनाय फायदिंगे जों दाबो अ बेचेबो हायनो हायो जामुं खोनाबै नालाय

0: भाभी, उस वक्त आपने जो कुछ कहा गुस्से में कहा।
1: हनी,
2: उनसे भी पूछिए ना।
3: एक्सक्यूज मी, आप लेंगे?

0: नाम क्या है आपका?
1: रिजवान खान खान।
0: मैं इमरान हूँ और ये साजिदा है। अरे कहाँ चल दी? बस को निकलने को वक्त है अभी।
1: नमाज टाइम।
0: नमाज टाइम?
1: नमाज टाइम।
0: अभी यहाँ? अरे भाई नमाज जगह और लोगों को देख कर पड़ी जाती।
1: नो नो नो, नमाज जगह और लोगों से नहीं, नियत से पढ़ी जाती है।

पूर्ण मैच अनखा आबनकारी तई कायबा मैच वातनि बागी कारि रजाखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नायकल जाक बुरै रावनि क्रिकेट बातायलायमाव तिनि कायनि थोंमुंखा नरसिंहनि टीआईटी थों खलाव संजाजाक थोंलायमाव रामनगर स्पोर्टिंग क्लाब रान 34 बाय युनाइटेड बीएसटी न तय नरसिंहनि पीटीए थों खलाव तरुण संघ कोचिं सेन्टर विकेट कायसि बाय प्रगति प्ले सेन्टर न मेचेनखा तय कायनि थोंमु वातिनि बागै मथागरि जाखा बस्कां दामनुची बुरियो हास्तिनी सालथांग धलाई उनकुती खुवाई सालची सालग्रा तई सिपाही जला हांकर फेरांकगै वाति गोबां वाइमानो होनो हजगमुग्रखा नबरतिबा नायखुं खना सालनि साखान तुंमारी तंगन 34 डिग्री सेल्सियस तई खामानि निसि ब्रि सेल्सियसनि गाने गिनिव कक्तुमा पाइन सिगां कक्तुमा बुबारो तई वैसा राष्ट्रिय बख्र दुर्पति मर्मु तिनि राष्ट्रपति भवन नैसाइ निश्चित बिसिनि जुदा जुदा बाबय आलाइदा सामुता मनोरोगी खरक दक्षिदग न पद सरकारी आफारका नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी और तालनी नैचिसा सालमारी चंगजाक तंगमानि कमन इउनिभार्सिटी एन्ट्रेन्स टेस्ट आन्डार ग्रेजुएट आमजोंमा मुथाग रोखा तिनिनि बागि कक्तुमा अरुणपाख्या उनि कक्तुमा आवायंगान खना फुं दामसिनि सती ब्रिसिवा

0: धर्मेंद्र और जानी मानी वायलन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: High international crude prices and
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड

0: के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
4: Against the assessment of
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
4: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

0: एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।